पकड़ेगा भाया बाद शायर जैसे मछली ने तीर भेजी और क्या तो पकड़े सरजारा बाद शारा मछली ने की मिया मेरे हाथा जड़े दे